जसला पाथा नेपाल सम्बा चिन्छ सब पी खुदा तसलाथ द्वादशी थो रेडियो नेपाल ख आने नादिसा जिरुबी पाके नेपाल भाषा या समाचार। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रासोपा या महाधिवेशन कथ केन्द्रीय दुज तेगु लिपाङ्गु मत परिणाम सार्वजनिक जुया सुङ्गुदु केन्द्रीय दुज सम्फुकन शिवे यको मत अर्थमन्त्री नापा जुया सनादिमा डाक्टर स्वर्णिम वाग्लिङ हया दिगु दुसा वाग्लिङ खुला पाके नि खुसन हेकु मत हया दिगु खसा प्रभास पी गुकु मत याना नि खुस ने खुकु मत हया दिगु ख अथियाना निक गु थासे कानून मन्त्री नापा जुया चोना दिमा सोभिता गौतम हया दिगु दु रासोपा निर्वाचन आयोग बिगु जानकारी कथौ वेक्ल नि यास गुई पेकु मत हया दिगु खस शिशिर खनान नि पेस गुई याकु मनिष छा नि निस सुई नेकु गणेश पराजुली निदो पी याकु कविन्द्र बुर्लाकोटी नि छस चेपेकु विपिन कुमार आचार्य नि छस नि खुकु शङ्कर श्रेष्ठ झिम्पेस चेपेकु क्रान्ति शिखा धिताल झिम्पेस चेपेकु मत हया दिखु खस राजुनाथ पाण्डे झिन्च्यास झिन्कु अनुष्का श्रेष्ठ झिन्सो सङ्गे सोकु डाक्टर तोसिमा कार्के निनी सङ्गे नेकु विराज भक्त श्रेष्ठ निदो गुई पेकु मत हया दिगु ख थथियाना पदाधिकारी तेगु नितिन धासा चुनाव जुया हे चोङ्गु दनी। गृहमन्त्री सुदन गुरुङ लागु वासय आपूर्ति झोलिक हागतक ठेङ्का त्वा थलेता प्रहरी प्रशासन यता सक्रिय कथ न्युज्याता उजमा ब्यादिगुदु अन्तर्राष्ट्रिय लागु औषध नियन्त्रण तथा लिहिगु विरुद्ध या दिवस चलसता हिग पिथना दिगु हसना वैक्ल लागु वास नियन्त्रण या यता औपचारिक ज्यासोले सीमित मतस्य थुकिया आपूर्ति श्रृङ्खला हाग लिसिए त्वा थलेगु अभियान ह्यागेता ब ब्यादिगु ख गृहमन्त्री गुरुङ थिथि अध्ययन प्रतिवेदन लागु वास या अवैध लिया चोङ्गु उपया चङ्गु खने दुखु नेथना दिसे सरकार लागुवास यता सामाजिक हाठिया कठन कया लागुवास नहङ्केगु पला कथन ह्योज्या केता अभियान ह्योज्या केगु नीति कैता नवैक्ल इनाफ्याना दिगुदु गृहमन्त्री गुरुङ लागु औषध नियन्त्रण नीति रोकथाम नियन्त्रण व दुर्वेशनी स लापिनीगु उपचार व पुनस्थापना यता सरकार थ्याबिया तयागु नेथना दिगुदु वैक्ल स्थानीय तह विद्यालय टोल विकास संस्था युवा क्लब आमा समूह नागरिक समाज सञ्चार माध्यम फुक्क स्वपुतै पिँ दुई सामाजिक साझेदारी पाखे लागु औषध विरुद्ध अभियान सक्रिय बोतिया नीति नापा इनाभियाना दिगुदु। शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्री नापा सरकारी प्रवक्ता सस्मित पोखरेल राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड या लिचो पिथनेगु प्रक्रियास इलेहे पारदर्शी कथम फुङकागु धत्विका दिगुदु सामाजिक सञ्जाल फेसबुक पाखे थगु विचार पङ्का दिसे मन्त्री पोखरेल लिचो पिथनेगुलि छुन हत्या मचायागु नापा ध्या दिगुदु लिचो पिथङ्गु लितकया जुया चङ्गु आन्दोलन यता ध्याने तसे वैक्ल लोकतान्त्रिक समाज शान्ति नक्सा थगु विचार तैगु तेगु अधिकार या सरकार हना देशना सोनागु नेथना दिल तर आन्दोलन यापी विद्यार्थी त्यता कया सामाजिक सञ्जालले जुया सङ्गु छु बाम लागु मनु त्यता हना मदैगु कुन खिनेगु सरकार या ध्यान कोसालीगु ज्या जुया चोङ्गु थया दिगुदु मन्त्री पोखरेल शान्ति नक्सा आन्दोलन याना चोङ्गु लिता कया सुन मनुवा समूह या त सामाजिक सञ्जाल पाखे दुर्व्यवहार महामदुगु कथ मनुतेगु नुग्ले स्याइगु बोबिगु हना मदैगु मया त नापा सकल दथि इनाफेना दिगुदु थोय दति परीक्षा विश्वसनीयता व विद्यार्थी तेगु संशय या त कघाता सरकार छगु विशेष समिति निसुनागु जानकारी नापा मन्त्री पोखरेल लम्बिया दिगुदु। सूचना तथा संचार मन्त्री डाक्टर विक्रम तिमल सिन्हा जनता विश्वास नहंसा संचार माध्यम अस्तित्व दथियो नेस दनिगु थ्यादिगुदु चितवन हेग संचार कमी नापा खलाबला ब्याका दिसे डाक्टर तिमल सिन्हा थगु भलाओ जिम्मेवारी विशेष आपल समीक्षा यासे संचार कमी या त आत्मा मूल्याङ्कन या त इनाप्याना दिल मन्त्री डाक्टर तिमल सिन्हा सकल स्वपुतेपी नापा खलाबला याना मागु नीति नियम व कानुन संशोधन पाखे संचार लागा या त शिला केगु नीति ज्या याना चनागु कनादिगु दुस छगु ब्याग्लन हेस मन्त्री डाक्टर तिमल सिन्हा आयागु सरकार देव जनता यता केन्द्र खेत या मनुतेस अनुभूत यैगु याना ज्या यता निजना चनागु धया दिल मिघे पार्टिया हागतक वनेगु याना
ह्यानाचोङको अधिवेशन ल्यागा संचार कमी तेगु निहेसले लिसबिया दिसेन डाक्टर तिमल सिन्हा महाधिवेशन राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी राजसभा या त अझ ढिसी लाकेता जिम्मेवार एकीकृत देखिए गु ज्याजुयासँग दया दिल राजनीति पार्टी जीवने महाधिवेशन या तदङ्गु अर्थ दैगु कनादिसे मन्त्री तिमल सिन्हा महाधिवेशन लेमा नेतृत्व देयागु फुक्कन सिबे तदङ्गु राजनीति दल राजसभा या त सकल मनुते गु सकल मनुतेसा आशा कया चो कथ न्याइगु भलसा नपाकया दिल राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल वैकल्पिक विकास वित्त परिचालन विधेयक 2083 प्रमाणीकरण याना दिगुदु राष्ट्रपति पौडेल प्रतिनिधि सभा या बैठकसँग पारित जय प्रमाणीकरण या नीति दूत बिया वोग विधेयक नेपाल या संविधान कथा प्रमाणीकरण याना दिगु राष्ट्रपति या कार्यालय या प्रवक्ता रितेश कुमार साक्यम पिथना दिगु विज्ञप्तिसँग नथना तगुदु स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालय या अथे छिदो भायल एन्टी रेबिस खोप मौजा दुगु जानकारी बिगुदु मन्त्रालय सह प्रवक्ता डाक्टर समीर कुमार अधिकारी आ केन्द्रीय प्रादेशिक व जिल्ला स्तरीय अस्पताल तेगु भण्डारने झिदो झिन्छगु भायल एन्टी रेबिस खोप मौजा दुगु जानकारी बियादिगु खस वैकया कथा विश्व स्वास्थ्य संगठन या ग्वालीसँग नि यास भायल एन्टी रेबिस खोप वो गुकना दिगु दुस मेगु पेदो न्यास भायल खोप वैगु छु दि दुने वैगु नापासो चबेगुदु मन्त्रालय स्थानीय तयता खिचा व मेगु जनावर तेसा न्यास व्यवस्थापन व मागु खोप सेवा या सहजीकरण या त नापा इनाफेना दिगुदु मन्त्रालय ललहाना वयाचुङ्गु खोप व्यवस्थित वितरण व व्यवस्थापन पाखे सेवा या त मडिक निजा केगु व निजा के त सपुदुको निकाय नापा मडिक खलाबला जुया चोङ्गु न सहप्रवक्ता डाक्टर अधिकारी जानकारी बियादिगुदु राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप 2076 या त यी कथा पुनरावलोकन या त निसङ्घ कार्यदल विद्यालय त या सपु पुनरावलोकन या त सपुतैपि नापा राय सुझाव फोङ्गुदु शैक्षिक 2080 निसे राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप 2076 या न्यादया चक्र पुङ्क गुनी थो पुनरावलोकन या गुनि ती पाठ्यक्रम विकास केन्द्र थगु वेबसाइट पखे सार्वजनिक कथा राय सुझाव फोङ्गु ख सशस्त्र प्रहरी बल मनसुन जन्य विपद प्रति कार्य नीति देन्यङ्क या थिति ङे पेङ्गु थासे अस्थायी मनसुन प्रति कार्य बेस पलिस्ता यागुदु सशस्त्र प्रहरी कार्यालयसँग विपद उतारे

अब प्रस्तुत गर्दैछौ आज रेडियो नेपाल बागमती प्रादेशिक प्रसारणमा साँझ 6 बजेसम्म प्रसारण हुने कार्यक्रमहरू बारे जानकारी।

लसो फ्याफुल्ला तिनी मन्जुश्री सम्म त 2862 तालो बेलबोल आला छेपा चुइसे गिक विक्रमसम्म 2083 साल असार लला चुइसे सुङ्रे शुक्रबार चु रेडियो नेपाल हिन्ना तामाङ साङ्गुरी रङ्ग डेन्मुला ङा सूर्य मोक्तान दिम्लोन सुदन गुरुङ से लागु मान्दा सामाजिक चुनौतीले रूपरेखिन्सी सरकार से लागु मान थुन्न लब अभियान सिंहबारे बाङ्ला सेला मुला बिसे सुङ्सिब मुला मोक्युल लागु मान नियन्त्रण थेन बाबु बोर्ब विरुद्धला दिन्छेल्ला अवसर नि तिनी राङ्ला ल्याङ्ग थान्छिमान दिम्लोन गुरुङ से लागुमान बाबा बोर्बा थिएन दुरुपयोग लब सम्बन्धी अपराधिक जाल द फ्याङबारी बेनान संरचना परिचालन लसेल मलाई विशेष सुङ्छु बहिन्ना दिम्लोन गुरुङ से लागुमान बाबा बोर्बा थिएन दुरुपयोग लब विवाह सामाजिक विकृति चेक नातना राष्ट्रिय सुरक्षा टाङ्गाला नोक्सानी थिएन जनस्वास्थ्य त कमजोर शोभा गोर्खिक आज बा गे थिएन मुर केमसाङ ताबा संगठित अपराध दानुन च्याङनालाबारी बेनान डेक्सी गेलाबारी खाम्दोला विषय सुङ्छु बमुला पशु सेवा विभाग से याम्बु उपत्यका थिएन ख्यारखुला जङ्गदरी बर्ड फ्लू संक्रमण लेबारे आपिनबारी प्राविधिक टोली सोसी नियन्त्रण लाबारी बाङ्ला बबोला विभाग से लामान प्रयोगशालादी नियमित नमुना परीक्षण लसी निगरानी लिएन लाभ हिन्न याम्बु भक्तपुर ललितपुर थिएन काभ्रेरी संक्रमणलाई जोखिम लेबारी वाङबाली छ चुह्याम द नियन्त्रण निकिनबारी लामान ग्रेन प्राथमिकता रिथानमा मुला विषय विभागला महानिर्देशक डाक्टर उमेश दाहाल से सुङ्छु बबोला महानिर्देशक दाहाल से लासोमगा छठुङमा संक्रमण दान्दे युल्ला गोर्चुसे गिक जोङरी लिए बमुला विषय सुङ्ब मुला युल्ला घर्जगिक बिमा लामा नागा फार्मरी बर्ड फ्लू संक्रमण पुष्टि ताबा लिच्छा थे फार्मगा देरी मुबा नागा नाग मेन्दो थेन दाना दा भिप मुला विभाग से दरेम छो आछो लागिक से गंगसा दोना छार नागाला कोला आथन मारी थेन सतर्क तबारी बेनादन मोइजेन लाभ मुला याम्बो उपत्यकाला चन्द्रगिरी कृतिपुर टोखा तारकेश्वर गोदावरी चागुनारायण थेन सूर्य विनायकला नागा फार्मरी संक्रमण पुष्टि ताप मुला विषय पाङ्ब मुला बर्ड फ्लू मान्थेन खोप प्रभावकारी आतापसै भाइरल नामन संक्रामक ताबा थिन नागा थिन हाँस्ता साइसी भिप बिमा स्यान जब विकल्प आरे विषय विभाग से पाङ्ब मुला विभागलाई महानिर्देशक दाहाल से सुसंक्रमण मिदाइनुन को बारे खाम बसे योनबिमा योना छुदा नियन्त्रण निकिनमारी छोङखेन थिन उपभोक्ता सावधानी तसिपिनबारी मैजेन्डा छिप मुला विभागलाई महानिर्देशकलाई चोहबाङ्री केन्द्रलाई बर्ड फ्लू समन्वय समिति थिएन ग्रेन्जोङ अधिकारीलाई घुबाङ्री बर्ड फ्लू समिति समन्वय समिति सोप मुला साइबर नागा नागमेन्दो थिएन दानालाई आधारी जोङसे समिति से तोकलाबा दर रेटलाई आधारी लागा ताबा साइला निश्चुई से घा प्रतिशत सानम बन्द क्षतिपूर्ति पिनमा ठिम मुला विषय विभागलाई सूचना अधिकारी मुकुल उपाध्याय से सुङ्बा मुला राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलाई गिक्सा ग्रेनवाल से दानपोका दे दामबारी सिंहमा निर्वाचन दान्दे थुम्से जिन्बा मुला मेन्दो गिक जामेकोला चोहो ग्रेन लोन्छेन थेन रो ग्रेन लोन्छेन ला छ्याम्री गोरिङहा दाण्डी मेन्दो गिचुइ से गिसे उम्मेदवारी पिन्छी पिनमा चाहिँ निर्वाचन सिंहमा हिन्ना खुल्ला रो चोहोला दाण्डी विसाम डाक्टर स्वर्णिम वाग्री से सेकेन्ड उम्मेदवारी पिनमा मुला स्यान दाण्डी विसाम तोब बिमा लामा से उम्मेदवारी पिनमा चाहिँ सहमति ताबारी आखाममा निर्वाचन सिंहमा हिन्ना पार्टीले मियो निर्वाचन आयोग से पिनमा उम्मेदवार गदेला विवरण अनुसार मेन्दोगिक जामेखोला रोचोहोरी सोभिता गौतम थिएन डाक्टर तोसिमा कार्की से प्रतिस्पर्धा लाभ मुला चुरानुला से मेन्दोगिक ग्रेन लोन्छेनला दाण्डी मेन्दो चुई से उम्मेदवारी पिनमा मुला राष्ट्रपाला गाछाला ग्रेन लोन्छेन कविन्द्र बुर्लाकोटीला छ्याम्री गोबन गदे प्रमोद नेउपाने राजुनाथ पाण्डे मनिष झा जगदीश खरेल रन्जु दर्शना गणेश कार्की गणेश पराजुली सागर ढकाल थिएन विपिन कुमार आचार्य से उम्मेदवारी पिनमा मुला चुरानु नसे मेन्दो नी रो ग्रेन लोन्छेनला दाण्डी मेन्दो चुइसे गिक्से उम्मेदवारी पिनमा मुला रो ग्रेन लोन्छेन री रमेश प्रसाई यज्ञमणि नेउपाने सुलभ खरेल असीम शाह अशोक कुमार चौधरी मिलन लिम्बु पुकार बम राजीव खत्री विजय जैरू हरि ढकाल थिएन हिमेश पन्त से उम्मेदवारी पिनमा मुला मेन्दो गिक जामेखोला रो लोन्छेनला दाण्डी जुली यादव जमुना शर्मा कामिनी कुमारी चौधरी निशा डाँगी थिएन रिमा विश्वकर्मा से उम्मेदवारी पिनमा मुला विषय आयोग से पाङ्ब मुला चोबेमा गाछा दाम्बा मेन्दो कुचुई से कु मियो मुल्मी से चिकेन घिच्छा रेमला निर्वाचन प्रक्रियारी बोकिनमा मुला चुनुन ताङ्रे ग्रेन लोन्छेनला दाण्डी उम्मेदवारी पिनमा पार्टीला गाछाला ग्रेन लोन्छेन कविन्द्र बुर्लाकोटी थिएन छारदाम्बा मियो मुल्मी जगदीश खरेल से राङ्ला उम्मेदवारी यही सिकिनमा मुबा राष्ट्रिय सभाला तिरिलची चाङ्री सांसद गदेशे बारखाला दुईरी जोखिम ताबारी खाम्बा ग्लाला ह्युलबादा वैकल्पिक टिबा ग्ला पिन्सी सुरक्षा पिन्दोबा थिएन गे आपिन्ना सुकुम्बासिदा होल्डिङ सेन्टर ग्याम तेब विवा मिलै पोर्नाङमा हिन्न विषय सुन्भा मुला सांसद गदेशे सनम आरेबा ह्युल्बा सुकुम्बासी थिएन स्योङकुनिरी अव्यवस्थित टिबन खाबा गदेदा
टिबाग्ला पिन्दोबा थिन मी आमराङबा हिलबासे सडकरी वाइको से शोभन खापाका दिदा सरकार से काशी पिनमा से थेरङ्गा आलबरी सुङ्गा मला सांसद गदे से दान्देला सरकार से भारत थिन लाबा सुपुर्दगी सम्झौतालाई प्रभाव थिन प्रक्रियालाई फेरि पारदर्शिता भरी खाम्दोला विषय सुङ्गा मला सांसद गदे से मधेश्री सानाङलाई क्युई लामन तेसी जिम्मा से क्युई भेसी बोरिङ लामा सुताइनन् क्युई खाबरे खाबसे मधेश्री थुङबा क्युई थिन सिन्चाइला पहुज लिन लातोबा उस्युब थिन चिनी उत्पादन आत्मनिर्भरता सि चिनिदा फेक्या भ्युली पुइबारी खाम्बा वातावरण सोची पिन्दो बताम सुङबा मोला चरणुलासी सांसद गदे से निभा भदौलालाई घिचु से घिथेन घिचु से सोमकुनुला घटनारी याछा एन्सेन तयारीला से याङला ह्युली अशान्ति लिन लाबा थिन ह्युल्दा आजब सुबारी बोकिनमा कदिता माइदोबा निष्पक्ष छानबिन लादोबा थिन कारबाही लादोबा माग लाबो मोला चिसाङला शून्य दुई रिताम थाम्बा सांसद गदेसे कक्षा चुइसे घिला रिजल्ट खाबली छ लोपुन गदेसे विरोध लाबा ताम्दा सरकार से गम्भीरता सिक्किन्दोबा स्यार्थेन लुइथुम्री सोम प्रतिशत कर लागेबलाबारे आताबा ट्राफिकला प्रभावकारी व्यवस्थापन लादोबा इन्धनला महँगी दच्याङ्न लादोबा रङबा लोलो लोलो समसामयिक ताम्रे सरकारलाई ध्यान छिङ्न लाबो मोला चिसाङबी ह्युल्चोहोसे वैकल्पिक विकास वित्त परिचालन विधेयक 2083 प्रमाणीकरण लाबा ताम्रे ह्युल्चोहो गेदिम से पुइगा पत्रला बिहोरा राष्ट्रिय सभाला चोहो नारायण प्रसाद दाहाल से दोन्चो बमला राष्ट्रिय सभाला अर्को चिसाङ चुनुन असारला चुइसे घाकुनु टिसलता बमला नेकपा एमालेलाई रोचोहो थिएन गाछालाई नोर्ब्रोन विष्णुप्रसाद पौडेललाई तर्फ ग्याम ग्रेन्थिम काङ्ग्रे दायरलाबा बन्दी प्रत्यक्षीकरणलाई रिटलाई सुनवाई चुनु असारला चुइसे ढुकुनुलासेला थापा मोला पौडेललाई माइमा दो माया पौडेलसे रोचोहो पौडेलदा युल्ला ठिम्द नाङ्सी चुप्सी थान्बा विमान चुनु असारलालाई चुइकुनु ठिम काङ्ग्रे रिट निवेदन पिन बम्बुबा थे रिटला फेरि ठिम्पोन्सेन्बो श्रीकान्त पौड्याललाई इजलासे चुनु असारलालाई चुइसे घाकुनु महान्यायाधि वक्तालाई गेदिम्दा ब्रिभ जवाफ रिबा थिन असार चुइसे ढुकुनु सुनवाई लाबारी आदेश पिनबा मोला रोचोहो पौडेलदा सम्पत्ति शुद्धिकरण सम्बन्धीला कसुरी चुनन असार लाला भेकुनु सुर्खेत्री चुङसी चुनन लाला कुकुनु विशेष ठिमखाङ याम्बुरी बाबु मोबा विशेष ठिमखाङ से विषयमा अनुसन्धान लाबारी सातागिक हिरासत्री थानबारी अनुमति पिन्से चिनबा मोला रोचोहो पौडेलदा सम्पत्ति शुद्धिकरण अनुसन्धान विभाग सिद्धान्तै अनुसन्धान लाबन मोला ओसेम राष्ट्रिय सभाला विकास नोर मामिला थिन सुशासन समितिरी तहगत व्यवस्थापिका थिन वित्तीय ब्रेलवालाई फेरि काठी लाबो मोला समितिला तिनीटी बच्ची साङसे सुदूर्नो प्रदेश सभाला नोर विकास थिन प्राकृतिक स्रोत समिति राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत थिन वित्त आयोग थिन योजना आयोगलाई फेरि काठुइला बहिना काठुइरी राष्ट्रिय योजना आयोगलाई रोचोहो डाक्टर गुणाकर भट्ट से समावेशी थिएन समन्यायिक विकासलाई हिसाब से सानाम थिएन जनसङ्ख्यालाई आधारित विकास बजेट बाबे हिँड्न विषय संक्षेप मला प्राकृतिक स्रोत थिएन वित्त आयोगलाई गेतेनबा चोहो विपिन राज निरौला चाहिँ स्थानीय तहगदेला मिलो विकास सूचकाङ्क तोकलाबा दुईरी आपुइखामा राजस्व फेवारी समस्या ताब मला विषय संक्षेप मला समितिला चोहो कृष्णप्रसाद पौडेल से सन्तुलित विकास लबारी खाम्दोबा से दान्दे सरकार से बाबा बजेट समन्यायिक ठिन्द नाङ्सी बाबा हिन्ना विषय सुङ्छुब मोला चुनन साङ्गुर गदेला छ्याम्री तिनी त तामाङ साङ्गुर जिन्जी रेडियो नेपाल ज्ञान मल्लासुगो लसो फ्याफुल्ला

यी सार्वजनिक सेवा प्रसारण रेडियो नेपाल बर्दिवास्थिक विजय झासा सुनल जा मैथिली भाषा समाचार। व्यवस्थापिका संसद अन्तर्गत प्रतिनिधि सभाके 3 दिनके लेल तय भेल बैठक विशेष कारणवश रवि दिन पहुँचल अछि। संघीय संसद सचिवालय शुक्र दिन आइ सूचना जारी करैत बैठकके दिन आ समय परिवर्तन भेल जनौलक अछि। सचिवालयके महासचिव पद्म प्रसाद पाण्डे द्वारा जारी सूचना हिसाबे एहिसँ पहिने 13 गते 3 दिन भिनसर 11 बजे वैश्वासन निर्धारण कयल गेल प्रतिनिधि सभाके बैठक विशेष कारणवश एहि समयमे बैसन नहि सकत। प्रतिनिधि सभा नियमावली 2082 के नियम के 6 उपनियम 3 बमोजिम सभामुख सभा के बैठक 2082 अखाड़ 14 गते रवि दिन भिनसर 11 बजे वैश्वासन पुनः निर्धारण कयलनि अछि। संसद सचिवालय के हिसाबे राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी के राष्ट्रीय महाधिवेशन आ विपक्षी दल अपन पूर्व निर्धारित राजनीतिक कार्यक्रम रहल कहैत 3 दिन के बैठक के आगू बढ़ावा लेल विशेष आग्रह कयलाक बाद सभामुख संसद नियमावली हिसाबी बैठक रवि दिन के लेल आगू बढ़ौलक अछि। राष्ट्रीय सभा के आजुक बैठक में सांसद सब वर्षा के समय में वैकल्पिक बसोबास सुरक्षा रोजगारी के व्यवस्था नै क सुकुमवासी के होल्डिंग सेंटर से हटा मानवाधिकार विपरीत भेल बतौलनि अछि। सांसद सब भूमिहीन नागरिक सुकुमवासी आ नदी किनार में अवस्थित बसोवासी के उचित व्यवस्थापन तथा दृष्टिविहीन नागरिक के जीविकोपार्जन संग जोड़ल गेल सड़क में सांगीतिक प्रस्तुति देवला पेशा में सरकार लगौने प्रतिबंध हटाकर ई पेशा के तत्काल पूर्ण स्थापना हेबाक चाहिए बतौलनि अछि। बैठक में सांसद सब वर्तमान सरकार भारत सरकार संगे ने सुपुर्दगी समझौता के प्रभाव और प्रक्रिया के संबंध में स्पष्ट पारदर्शिता सड़क दुर्घटना न्यूनीकरण करबाक लेल राजमार्ग में सुरक्षा व्यवसाय के सुदृढ़ीकरण तथा ट्रैफिक के प्रभावकारी व्यवस्थापन करबाक आवश्यक रहल बतौलन। सांसद सब मध्यस्मी भूमिगत जल के अत्यधिक दोहन से जलस्तर घटला से बोरिंग से पानी सेहो आब नहीं आबि रहला से मधेशमी पीबय वाला पानी आ सिंचाई के पहुँच बढ़ायल जेबाक चाही तथा कुशियार आ चीनी उत्पादन में आत्मनिर्भरता बढ़ाकर चीनी के निर्यातमुखी प्रवर्धन के वातावरण निर्माण में जोर दिलन। अहिना सांसद सब भादो 22 आ 23 गति भेल घटना में पूर्व तैयारी सहित घुसपैठ कर देश में अशांति फैलाव वाला तथा राष्ट्र विरोधी गतिविधि में संलग्न सब संलग्न व्यक्ति के खोज निष्पक्ष छानबीन आ कार्रवाई हेबाक चाही मांग कलन। शून्य समय में सांसद सब कक्षा 12 के नतीजा प्रति विद्यार्थी के विरोध के सरकार गंभीरता पूर्वक लेबाक चाही। शिक्षा आ स्वास्थ्य क्षेत्र में 3% कर लगाब उपयुक्त नहीं हैत। ईंधन के महगी नियंत्रण लगायत के विभिन्न समसामयिक विषय में सरकार के ध्यान आकर्षण करौलन। बैठक में राष्ट्रपति से वैकल्पिक विकास वित्त परिचालन विधेयक 2083 प्रमाणीकरण भेल संबंध में राष्ट्रपति कार्यालय से प्राप्त भेल ब्यौरा राष्ट्रीय सभा के अध्यक्ष नारायण प्रसाद दहाल जानकारी करौने छलथि। बैठक में राष्ट्रीय सभा के सचिव तुल बहादुर कड़ेल विनियोजन विधेयक 2083 के संबंध में प्रतिनिधि सभा से प्राप्त संदेश सभा समक्ष टेबुल कलन। बैठक में प्रतिनिधि सभा के पूर्व सदस्य एवं पूर्व मंत्री राजेंद्र खरेल के निधन में 1 मिनट मौन धारण कयल गेल छल। राष्ट्रसभा के दोसर बैठक अखाड़ 15 गते सोम दिन सभा 12 बजे बैसत। गृहमंत्री सुदन गुरुंग लागू औसत के सामाजिक चुनौती के रूप में लेत सरकार लागू औसत के अंत के शुरुआत करय वाला अभियान संचालन करबाक नीति लेने बतौलने छ। अंतर्राष्ट्रीय लागू औसत नियंत्रण तथा ओसार पोसार विरुद्ध के दिवस के अवसर पर आई संदेश जारी करत ओ लागू औसत के ओसार पोसार आ दुरुपयोग संबंधी आपराधिक जाल के ढाहा के लिए सब संरचना परिचालन कयल जेबाक बतौलन। लागू औसत के ओसार पोसार आ दुरुपयोग केवल सामाजिक विकृति मात्र निभा राष्ट्रीय सुरक्षा आर्थिक नुकसानी आ जन स्वास्थ्य के कमजोर बनाबय वाला एक जटिल तथा सीमा पार होबय वाला संगठित अपराध भेला से अय के न्यूनीकरण के लिए सबके सहकार्य आ समन्वय आवश्यक रहत गृहमंत्री गुरुंग बतौलन। लागू औसत दुर्व्यसनी मुक्त समाज बनाबय लेल मंत्रालय अय के रोकथाम नियंत्रण तथा दुर्व्यसनी में फसल के उपचार का समाज में पुनः स्थापना करय वाला कार्य के उच्च प्राथमिकता में रखने गृहमंत्री बतौलनि अछि। एहि बीच दिवस के अवसर पर आई गृह मंत्रालय में आयोजित कार्यक्रम में गृह सचिव राजकुमार श्रेष्ठ लागू औसत के उत्पादन वितरण आ उपभोक्ता के श्रृंखला तोड़ के काज भ रहल स्पष्ट कयलनि अछि। नेकपा एमाले के उपाध्यक्ष एवं पूर्व अर्थमंत्री विष्णु प्रसाद पौडेल के दिशा सर्वोच्च अदालत में दायर कयल गेल बंदी प्रत्यक्षीकरण के रीट ऊपर के सुनवाई अखाड़ 16 गते हैत। पौडेल के श्रीमती दोमाया पौडेल हुनका गैर कानूनी रूप में थुना में राखल गेल चर्च करे तखार 10 गते अदालत से रीट निवेदन देने छलथि। रीट के संबंध में न्यायाधीश श्रीकांत पौडेल के इजलास अखार 15 गते महानिधिवक्ता के कार्यालय संग लिखित जवाब
माग करबाक आ अखाड़ 16 गते सुनवाई करबाक आदेश दिलक अछि। उपाध्यक्ष पौडेल के संपत्ति शुद्धिकरण संबंधी कसूर में अखाड़ 8 गते सुर्खेत सँ पकड़ के अखाड़ 9 गते विशेष अदालत काठमांडू में उपस्थित करायल गेल छल। विशेष अदालत अनुसंधान के लिए 7 दिन हिरासत में राख के अनुमति दिलक अछि। नेता पौडेल विरुद्ध संपत्ति शुद्धिकरण अनुसंधान विभाग अनुसंधान कर रहल अछि। मध्य प्रदेश में प्रदेश विनियोजन विधेयक अंतर्गत आवे वाला आर्थिक वर्ष 2083-84 के लिए विनियोजन भेल विषयगत मंत्रालय के शीर्षक पर अखाड़ 17 गते से विचार विमर्श होयत। विनियोजन विधेयक ऊपर के विचार विमर्श के लिए अखाड़ 17 गते के लिए प्रदेश सभा अधिवेशन आह्वान करवाक तैयारी भेल सभामुख राम आशीष यादव जानकारी दिलन। मध्य प्रदेश सरकार आवे वाला आर्थिक वर्ष 2083-84 के लिए 41,13,46,00,000 के बजट विनियोजन कैने अछि। सप्तरी के 18 स्थानीय तह मध्य 17 स्थानीय तह आवे वाला आर्थिक वर्ष 2083-84 के लिए अखाड़ 10 गते भीतर बजट अन्यस्त जिला के खड़क नगरपालिका अखन धरि बजट आना नहीं सकल। स्थानीय सरकार संचालन ऐन 2074 के दफा 71 हिसाबे आवे वाला आर्थिक वर्ष के अनुमानित बजट अखाड़ 10 गते भीतर गाँव नगर सभा में पेश करबाक प्रावधान रहल अछि। आब मौसम समाचार। अखन कोसी मधेस आ बागमती प्रदेश के संपूर्ण क्षेत्र गंडकी प्रदेश के किछ तथा लुम्बिनी प्रदेश के पूर्वी भाग में मानसूनी वायु के प्रभाव रहल अछि। अन्य भाग में पश्चिमी आ स्थानीय वायु के आंशिक प्रभाव रहल अछि। जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखा के हिसाबे अखन देश के हिमालय आ पहाड़ी क्षेत्र में सामान्यतः बदली रहल अछि। तराई में आंशिक बदली रहल अछि। बागमती गंडकी आ लुम्बिनी प्रदेश के पहाड़ी क्षेत्र के दो स्थान में मेघगर्जन तथा ठनका सहित हल्का वर्षा भ रहल अछि। आई राति कोसी बागमती आ गंडकी प्रदेश के हिमालय तथा पहाड़ी क्षेत्र के किछ तथा लुम्बिनी प्रदेश की हिमालय एवं पहाड़ी क्षेत्र के एक दो स्थान में मेघगर्जन तथा ठनका सहित मध्यम वर्षा तथा हिमपात के संभावना है। कोसी प्रदेश के तराई तथा मध्य प्रदेश के किसी स्थान में मेघगर्जन तथा ठनका सहित मध्यम वर्षा की संभावना रहल महाशाखा जनौलक। आप खेल समाचार। फीफा विश्व कप फुटबॉल प्रतियोगिता में ऑस्ट्रेलिया समूह डी के उप विजेता बनैत नॉक आउट चरण में प्रवेश कलक। अमेरिका के सान फ्रांसिस्को वे एरिया रंगशाला में संपन्न खेल में पराग्वे संग गोल रहित बराबरी खेलित ऑस्ट्रिया नॉक आउट चरण में प्रवेश कलक। समूह डी से 4 अंक लेने ऑस्ट्रेलिया समूह उप विजेता बनैत नॉकआउट में प्रवेश कलक। इन्हें 6 अंक के साथ शीर्ष स्थान में रहल अमेरिका समूह विजेता के रूप में नॉकआउट चरण में पहुंचल। ऑस्ट्रेलिया संग बराबरी खेलने पराग्वे नॉकआउट चरण में पहुंचवाक संभावना कायम रहल अछि। वह समूह में रहल टर्की 3 अंक के संग प्रतियोगिता से बाहर भेल अछि। आइ भेल दोसर खेल में टर्की अमेरिका के 3-2 गोल अंतर से पराजित भेल छल। एहिसँ पहिने 2 खेल में जीत निकालने अमेरिका शीर्ष स्थान में रहकर समूह के विजेता बनल अछि। नेदरलैंड संग आयोजना होय वाला आईसीसी पुरुष क्रिकेट विश्वकप लीग 2 के लिए नेपाली क्रिकेट राष्ट्रीय क्रिकेट टोली की घोषणा कैल गेल अछि। नेपाल क्रिकेट संघ क्यान रोहित पौडेल के कप्तानी में टोली सार्वजनिक कैल गेल अछि। 15 सदस्यीय मुख्य टोली के उपकप्तान में दीपेंद्र सिंह एरी रहल छथि। टोली में लेग स्पिन संदीप लामिछाने सहित कुशल भुर्तिल, आसिफ शेख, आरिफ शेख आ सोमपाल कामी जन अनुभवी खिलाड़ी यथावत रहल छथि। एहना टोली में ईशान पांडे, गुलशन झा, करण केसी, नंदन यादव, ललित राजवंशी, भीम सार्की, अर्जुन कुमार आ विनोद भंडारी स्थान बनाबे में सफल भेल छथि। मुख्य टोली के अतिरिक्त 5 गोटे खिलाड़ी के वैकल्पिक सूची में राखल गेल अछि। वैकल्पिक खिलाड़ी में संदीप जोरा, सहाब आलम, हेमंत धामी, आकाश चंद, युवराज खत्री रहल छथि। नेपाली टोली नेदरलैंड्स में आयोजना होय वाला त्रिदेशीय श्रृंखला के क्रम में लीग 2 अंतर्गत के अपन खेल सब खेल के तालिका रहल अछि। अब अंतर्राष्ट्रीय समाचार। भारतीय प्रहरी उत्तर प्रदेश राज्य के राम मंदिर में चोरी आ प्रसाद के दुरुपयोग के नया रूप में 8 गोटा के पकड़ने जनौलक। बृहस्पति दिन जारी कैल गेल सरकारी विज्ञप्ति में प्रहरी मंदिर के कर्मचारी सहित 8 गोटा के पकड़ित चंदा वितरण में अनियमितता भील आरोप में बृहस्पति दिन आपराधिक मुद्दा दर्ता कने जनौलक। जाहि मध्य अधिकांश नगद आ भक्त दान कने सोन आ चानी सहित के बहुमूल्य सामान गणना आ व्यवस्थापन करमे संलग्न रहल मीडिया रिपोर्ट कलक। मीडिया रिपोर्ट चोरी 2 करोड़ डॉलर से अधिक के अवचलन भेल भ सकबाक बतौलक। पकड़ल गेल ऊपर आपराधिक विश्वासघात, चोरी, आपराधिक षड्यंत्र, भ्रष्टाचार के आरोप लगायल गेल विज्ञप्ति में उल्लेख कैल गेल। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एहि विषय के देखा वाला विशेष अनुसंधान टोली गठन कने आ कोनो दोषी व्यक्ति के नहि छोड़बाक प्रतिबद्धता कने विज्ञप्ति में उद्धृत कैल गेल। सार्वजनिक सेवा प्रसारण रेडियो नेपाल बर्दीवास सुनि रहल मैथिली भाषा में समाचार पूरा भेल।

0: ये रेडियो नेपाल है। अब रमिता यादव से सुनिए हिंदी में समाचार। आरंभ में मुख्य समाचार। चितवन में आयोजित राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी रासोपा का प्रथम राष्ट्रीय महाधिवेशन नए नेतृत्व का चयन कर आज हुआ संपन्न। समावेशी और न्याय संगत विकास के दृष्टिकोण से आगामी आर्थिक वर्ष के लिए विकास बजट का प्रावधान किया गया है। राष्ट्रीय योजना आयोग के उपाध्यक्ष डॉ गुणाकर भट्ट का कथन। काठमांडू घाटी और आसपास के क्षेत्रों में बर्ड फ्लू संक्रमण फैलने से रोकने के लिए पशु सेवा विभाग द्वारा तकनीकी टीमों को किया गया तैनात। और रूस के नियंत्रण वाले क्रीमिया में यूक्रेनी हमलों के बीच आपातकाल घोषित। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी रासोपा का चितवन में आयोजित प्रथम राष्ट्रीय महाधिवेशन नए नेतृत्व का चयन कर आज संपन्न हुआ है। महाधिवेशन के तहत आज दूसरे चरण में महिला उपाध्यक्ष, महामंत्री, दो खुले सह महामंत्री और एक महिला सह महामंत्री पद के लिए मतदान हुआ। मतदान के परिणाम में सुविधा गौतम महिला उपाध्यक्ष निर्वाचित हुई। इसी प्रकार बिपिन आचार्य महामंत्री, असीम शाह और हरि ढाकाल खुले वर्ग से सह महामंत्री तथा निशा डांगी महिला सह महामंत्री निर्वाचित हुई। इससे पहले पार्टी अध्यक्ष पद पर रवि लामिछाने, वरिष्ठ नेता पद पर प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह और खुले वर्ग के उपाध्यक्ष पद पर डॉ स्वर्णिम वागले निर्विरोध निर्वाचित हो चुके थे। इससे पहले कल केंद्रीय सदस्य पद के लिए मतदान कराया गया था। रासोपा के विधान अनुसार पहले चरण में केंद्रीय सदस्यों का चुनाव और दूसरे चरण में पदाधिकारियों का चुनाव कराया जाता है। दोनों चरणों में सभी महाधिवेशन प्रतिनिधियों को मतदान का अधिकार प्राप्त होता है। राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी ने बताया कि नवनिर्वाचित पदाधिकारियों और केंद्रीय सदस्यों का शपथ ग्रहण समारोह भी आज ही संपन्न हुआ। रासोपा का प्रथम राष्ट्रीय महाधिवेशन आषाढ़ 7 गते रविवार से चितवन में आयोजित किया गया था। आज दोपहर 1 बजे निर्धारित प्रतिनिधि सभा की बैठक स्थगित कर दी गई है। संघीय संसद के महासचिव पद्म प्रसाद पांडे द्वारा आज जारी एक सूचना में बताया गया कि विशेष कारणों से आज की प्रतिनिधि सभा की बैठक स्थगित की गई है। संघीय संसद सचिवालय ने आज ही दूसरी सूचना जारी करते हुए प्रतिनिधि सभा की अगली बैठक परसों रविवार सुबह 11 बजे के लिए निर्धारित की है। इससे पहले आज ही महासचिव पांडे ने एक सूचना जारी कर बैठक को कल शनिवार सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित किए जाने की जानकारी दी थी। राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी रासोपा का प्रथम राष्ट्रीय महाधिवेशन चितवन में जारी रहने तथा पार्टी के सांसदों और मंत्रियों के महाधिवेशन में व्यस्त होने के कारण बैठक स्थगित की गई है। इससे पहले भी आषाढ़ 11 गते के लिए निर्धारित प्रतिनिधि सभा की बैठक स्थगित कर आज के लिए बुलाई गई थी। राष्ट्रीय सभा की आज की बैठक में सांसदों ने कहा कि वर्षा ऋतु के दौरान वैकल्पिक आवास, सुरक्षा और रोजगार की व्यवस्था किए बिना भूमिहीन एवं सुकुम्बासी परिवारों को होल्डिंग सेंटरों से हटाना मानव अधिकारों के विरुद्ध है। सांसदों ने भूमिहीन नागरिकों, सुकुम्बासी और नदी किनारे रहने वाले अव्यवस्थित बस्तियों के लोगों के उचित पुनर्वास की मांग की। साथ ही दृष्टिबाधित नागरिकों की आजीविका से जुड़े सड़कों पर संगीत प्रस्तुति देने के पेशे पर सरकार द्वारा लगाए गए प्रतिबंध को हटाकर उसे तत्काल बहाल करने की आवश्यकता बताई। सांसदों ने कहा कि मध्येश में भूजल के अत्यधिक दोहन से जलस्तर लगातार घट रहा है, जिसके कारण बोरिंग से पानी निकालना बंद हो रहा है। उन्होंने मध्येश में पेयजल और सिंचाई की पहुंच बढ़ाने तथा गन्ना और चीनी उत्पादन में आत्मनिर्भरता हासिल कर चीनी के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए अनुकूल माहौल तैयार करने की भी मांग की। बैठक के शून्यकाल में सांसदों ने कक्षा 12वीं की परीक्षा परिणाम को लेकर छात्रों के विरोध को सरकार द्वारा गंभीरता से लेने, शिक्षा और स्वास्थ्य क्षेत्र पर 3% कर लगाने के प्रस्ताव पर पुनः विचार करने तथा ईंधन की बढ़ती कीमतों पर नियंत्रण सहित विभिन्न समसामयिक मुद्दों पर सरकार का ध्यानाकर्षण कराया। बैठक में राष्ट्रीय सभा के सचिव तुल बहादुर कडेल ने विनियोजन विधेयक 2083 के संबंध में प्रतिनिधि सभा से प्राप्त संदेश सदन के समक्ष प्रस्तुत किया। राष्ट्रीय सभा की अगली बैठक आगामी सोमवार आषाढ़ 15 गते दोपहर 12:15 बजे के लिए बुलाई गई है। आप रेडियो नेपाल से हिंदी समाचार सुन रहे हैं। बस थोड़ी देर विज्ञापन।
1: नेपाल टेलिकम को 4G

सभा की विकास आर्थिक मामला तथा सुशासन समिति में आज विभिन्न स्तर की व्यवस्थापिकाओं तथा वित्तीय अंतर संबंधों से जुड़े विषय पर चर्चा हुई। सिंहदरबार में आयोजित समिति की बैठक में सुदूर पश्चिम प्रदेश सभा की अर्थ विकास तथा प्राकृतिक संसाधन समिति, राष्ट्रीय प्राकृतिक संसाधन तथा वित्त आयोग और राष्ट्रीय योजना आयोग के प्रतिनिधियों के साथ विचार विमर्श किया गया। चर्चा के दौरान राष्ट्रीय योजना आयोग के उपाध्यक्ष डॉ. गुणाकर भट्ट ने बताया कि समावेशी और न्यायसंगत विकास की दृष्टि से भौगोलिक स्थिति और जनसंख्या के आधार पर विकास बजट का प्रावधान किया गया है। उन्होंने कहा कि मध्येश, सुदूर पश्चिम और कर्नाली प्रदेशों में अभी भी आर्थिक विकास दर अपेक्षाकृत कम है, इसलिए संघ प्रदेश और स्थानीय सरकारों को मिलकर इन क्षेत्रों के लिए विकास बजट बढ़ाने पर ध्यान देना चाहिए। राष्ट्रीय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग के कार्यवाहक अध्यक्ष बिपिन राज निरोला ने कहा कि स्थानीय निकायों के मानव विकास सूचकांक समय पर उपलब्ध नहीं होने के कारण राजस्व वितरण में कठिनाइयां आ रही है। सुदूर पश्चिम प्रदेश सभा की अर्थ विकास तथा प्राकृतिक स्रोत समिति के सभापति घनश्याम चौधरी ने कहा कि प्रदेश सरकार संघीय और स्थानीय सरकारों के समन्वय के बिना प्रभावी ढंग से कार्य नहीं कर सकती। उन्होंने बताया कि कई मामलों में तीनों तहों की सरकारों के बीच समन्वय स्थापित करना चुनौतीपूर्ण हो जाता है। बैठक में सांसदों ने ये भी कहा कि वर्तमान सरकार का नेतृत्व कर रही लगभग 2/3 बहुमत वाली पार्टी राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी द्वारा अपने महाधिवेशन में प्रदेश सभा को समाप्त करने का प्रस्ताव पारित करना आपत्तिजनक है। उन्होंने पार्टी से इस निर्णय पर पुनः विचार कर उसे वापस लेने की मांग की। शिक्षा एवं खेलकूद मंत्री सस्मित पोखरेल ने कहा है कि सुदूर पश्चिम विश्वविद्यालय के टीकापुर आंगिक परिसर की अतिक्रमित भूमि को उपयोग में लाने की दिशा में काम को आगे बढ़ाया जा रहा है। आज कंचनपुर के महेंद्र नगर में आयोजित सुदूर पश्चिम विश्वविद्यालय के 6th दीक्षांत समारोह को संबोधित करते हुए मंत्री पोखरेल ने कहा कि टीकापुर परिसर की अतिक्रमण की चपेट में आई 300 बीघा भूमि को पुनः उपयोग में लाने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। दीक्षांत होने वाले विद्यार्थियों की संख्या में पिछले वर्षों की तुलना में लगभग 2 गुनी वृद्धि पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए उन्होंने कहा कि स्थानीय लोगों की आवश्यकता और भावना के अनुरूप विश्वविद्यालय में विभिन्न नए विषय और संकाय जोड़े जाएंगे। समारोह में कुल 2489 विद्यार्थियों को उपाधि प्रदान की गई। गृह मंत्री सुदन गुरुंग ने कहा है कि सरकार नशीले पदार्थों की समस्या को एक सामाजिक चुनौती के रूप में देखते हुए इसके उन्मूलन की शुरुआत करने के लिए एक विशेष अभियान चलाने की नीति पर काम कर रही है। अंतर्राष्ट्रीय मादक पदार्थ नियंत्रण एवं तस्करी विरोधी दिवस के अवसर पर आज जारी अपने संदेश में उन्होंने कहा कि मादक पदार्थों की तस्करी और दुरुपयोग से जुड़े आपराधिक नेटवर्क को ध्वस्त करने के लिए सरकार सभी संबंधित संयंत्रों और संरचनाओं को सक्रिय रूप से परिचालित करेगी। पशु सेवा विभाग ने बताया है कि काठमांडू घाटी तथा आसपास के क्षेत्रों में बर्ड फ्लू संक्रमण के प्रसार को रोकने के लिए तकनीकी टीमों को तैनात कर नियंत्रण अभियान तेज कर दिया गया है। विभाग ने काठमांडू, भक्तपुर, ललितपुर और कावरे जिलों में संक्रमण का खतरा अधिक होने के कारण रोग नियंत्रण को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए विभिन्न प्रयोगशालाओं के माध्यम से नियमित नमूनों की जांच और निगरानी बढ़ा दी है। विभाग के महानिदेशक डॉ. उमेश दाहाल के अनुसार लगभग 3 महीने पहले शुरू हुआ संक्रमण अब 11 जिलों तक फैल चुका है। उन्होंने बताया कि ये संक्रमण मनुष्यों में भी फैल सकता है, इसलिए संक्रमण पर शीघ्र नियंत्रण पाने के लिए पोल्ट्री व्यवसायियों और उपभोक्ताओं से अतिरिक्त सतर्कता बरतने की अपील भी की गई है। विभाग के अनुसार बर्ड फ्लू का ना तो प्रभावी उपचार उपलब्ध है और ना ही कारगर टीका। चूंकि ये वायरस अत्यधिक संक्रामक है, इसलिए संक्रमित मुर्गियों तथा अन्य पक्षियों को नष्ट करना ही सबसे प्रभावी उपाय माना जाता है। अब अंतर्राष्ट्रीय समाचार। रूस ने नियंत्रण वाले क्रीमिया प्रायद्वीप में यूक्रेन के लगातार ड्रोन और लंबी दूरी के हमलों के बाद रूस समर्थित प्रशासन ने पूरे क्षेत्र में क्षेत्रीय आपातकाल घोषित कर दिया है। रूस द्वारा नियुक्त क्रीमिया प्रमुख ने शुक्रवार को ये घोषणा की। रूसी अधिकारियों के अनुसार हाल के दिनों में यूक्रेनी हमलों से ऊर्जा अवसंरचना, ईंधन भंडारण केंद्रों और अन्य महत्वपूर्ण सुविधाओं को नुकसान पहुंचा है। अब मौसम। अगले 24 घंटों में काठमांडू घाटी का अधिकतम तापमान
तापमान 29 से 31 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 21 से 23 डिग्री सेल्सियस के बीच में रहने की

0: भावना है। पिछले 24 घंटों में काठमांडू घाटी का अधिकतम तापमान 30.5 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 21.4 डिग्री सेल्सियस रहा। अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। चितवन में आयोजित राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी का प्रथम राष्ट्रीय महाधिवेशन नए नेतृत्व का चयन कर आज हुआ संपन्न। समावेशी और न्यायसंगत विकास के दृष्टिकोण से आगामी आर्थिक वर्ष के लिए विकास बजट का प्रावधान किया गया है। राष्ट्रीय योजना आयोग के उपाध्यक्ष डॉ. गुणाकर भट्ट का कथन। काठमांडू घाटी और आसपास के क्षेत्रों में बर्ड फ्लू संक्रमण फैलने से रोकने के लिए पशु सेवा विभाग द्वारा तकनीकी टीमों को किया गया तैनात और रूस के नियंत्रण वाले क्रीमिया में यूक्रेनी हमलों के बीच आपातकाल घोषित। रेडियो नेपाल से प्रसारित रात 10 बजे के हिंदी समाचार समाप्त हुए। रात 11 बजे आप सुनेंगे नेपाली में समाचार। नमस्कार, शुभ रात्रि।
1: सादा खाना 100 रुपया, मटन खाना 200 रुपया। ओए, मोबाइल को डाटा पनि हामीले चलाको मेनु अनुसार महँगो र सस्तो पर्नु पर्ने होइन र?
2: हुन्छ नि मित्र, फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, भाइबर, व्हाट्सएप जस्ता सामाजिक सञ्जालहरू मात्रै चलाउने हो भने नेपाल टेलिकममा असाध्यै सस्तो मूल्यमा सोसियल मिडिया डाटा प्याक पाइन्छ। त्यही नै मजाले चलाउने
3: स्टार 1415 हेस डायल गर्नुहोस्। नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको सञ्चार।

वहमो गुमान से दूर दूर, यकीन की हद के पास पास, दिल को भरम ये हो गया, उनको हमसे प्यार है।

0: रेडियो नेपाल, नयाँ नेपालको समावेशी आवाज, राष्ट्रिय रेडियो, राष्ट्रको संचार।
1: I'm sorry, नमी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे प्लीज माफ कर दो।
2: It's over, अब सब कुछ खत्म हो चुका है शायद। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, लेकिन अब तुमसे शादी नहीं कर सकती।

रेडियो नेपाल, नया नेपाल को समावेशी आवाज, राष्ट्रीय रेडियो, राष्ट्र को संचार।